0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: संगीत
3: संगीत
4: संगीत रुदी खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
4: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
4: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
4: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
4: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
4: कल्चर ऑफ पंजाब

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, अच्छे कर्मों का फल, उस लड़की को आंखें वापस मिल गई और तब उसको इस बात का पता चला कि वो लड़का जो उसको बहुत चाहता था वो भी देख नहीं सकता था, ब्लाइंड था। लड़के ने अब उससे पूछा, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने साफ इनकार कर दिया। अपने टूटे सपने लेकर वो लड़का उस लड़की की जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया, सिर्फ ये कहकर कि मेरी आंखों का ख्याल रखना, देखना कि कभी इनमें आंसू ना आए।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: सुनो साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

मेरी कजन ने उस औरत से पूछा कि उस लेडी के हिसाब से उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम कौन सा था। तो उस 80 साल की औरत ने कहा कि जब वो छोटी थी और उसके माँ बाप उसे खूब प्यार देते थे, वो टाइम उसकी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था। फिर जब वो स्कूल जाने लगी, नई चीजें सीखने लगी, तो वो टाइम भी बहुत खूबसूरत लगा। फिर नौकरी मिली, शादी हुई, दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ अ लाइफ। फिर फैमिली शुरू हुई, अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखा, बहुत खूबसूरती से निकला वो वक्त भी। और आज वो 80 साल की है, तंदुरुस्त है, सबको प्यार देती है, सबसे खूब प्यार लेती है, खूब रिस्पेक्ट लेती है। तो अब वो कंफ्यूज है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये टाइम उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम है। तो देखिए, एक सोच ही है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। खूब प्यार और रिस्पेक्ट दो और वापस पाओ बहुत सी खुशियां और बहुत सा प्यार।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

अपना खसम पछाण, हर गुण गावै संत प्रसाद, काम क्रोध मिटै उन्माद, सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुर का पूर्ण मंत, हर तन खाट किए पंडार, मिल सतगुरु सबका इसवार, हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा, गोंड महला पंजवां, पाव सागर बोइथ हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंथ, महाविचार पंच दूतै मंथ, तौ सरनाई पूर्ण नाथ, जंत अपने कौ दीजै हाथ राव, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, पार ब्रह्म का करै वख्याण, जोगी जति बैसनो रामदास, मित नाही।

के मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्वनिधान तेरी दृष्टि मा है, नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव गोंड।